0: और तुम्हारा परवरदिगार बेपरवाह और साहिब रहमत है। अगर चाहे तो ऐ बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है।
1: इन्नमा तुअदून लआतिन वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन।
0: कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो वुकू में आने वाला है और तुम खुदा को मغلوب नहीं कर सकते।
1: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ।
0: कह दो कि लोगों तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि मुशरिक नजात नहीं पाने के।
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ

0: और चार पायों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस खुदा का दिया हुआ रिज्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है।
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين

0: कहो क्या मैं खुदा के सिवा और परवरदिगार तलाश करूं, और वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा।
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ।
0: और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नायब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान भी है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अलिफ लाम

और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं।

फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं।

0: उनकी कौम में सरदार लोग जो गुरूर रखते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज देकर वो भेजे गए हैं हम उस पर बिला शुबा ईमान रखते हैं।
1: قال

ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: 96.6 बोरियत को भगा दो।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उबने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और प्रोग्राम जावेद जिंदगी में। अली अजबद आपकी खिदमत में हाजिर है। और लिसनर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूं है कि हम जिंदगी से जुड़े पहलुओं के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को अपना कर अपनी जिंदगी को हम खूबसूरत और जावेदा बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अपने प्रोग्राम में हाईलाइट भी करते हैं, इन पर डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन आज हम एक नई किस्म की चीज़ जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पहले हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट मैटर्स अलॉट। तो आज हम एक बुक है, एक खूबसूरत किताब है जिसका नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जिंदगी के जो 12 रूल्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उसमें से बेस्ट एज पॉसिबल और जितने हम हाईलाइट कर सकें, किस तरीके से उन रूल्स को हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके, उन रूल्स पर अमल करके किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, जावेदा बना सकते हैं। इन सब चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है आप सबको पता है, जनाब मोहम्मद इरफान अली फानी साहब, सीनियर लेक्चरर भी हैं। उनको पहले तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम।
3: बहुत शुक्रिया अजवत
2: सर। आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक जो है वो चूज किया है, और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा 12 रूल्स ऑफ लाइफ। आपने जा रहे खुद इस बुक को पढ़ा भी होगा, कैसी बुक है, आपने उसके बारे में ये भी बताना है, और इसके बारे में थोड़ी सी मुझे जो इंट्रोडक्शन की चीजें होती हैं उनके बारे में बताइए कि राइटर कौन है इनके, ये कब लिखी गई, बुक का बेसिकली मैसेज क्या है जो हम लिसनर्स को बताएं कि बुक क्या कहती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: ये जो किताब की सिलेक्शन जो है ना, वो मैंने इसलिए ये की कि हम हर प्रोग्राम के अंदर आमतौर पे एक ही मौजू को जेरे बहस लाते हैं,
2: बिल्कुल,
3: और उसी मौजू के ऊपर हम 45 मिनट या एक घंटा डिस्कशन करते हैं, और वो मौजूआत होते हैं जो हमारी जिंदगी में हर वक्त हम उस अमल से गुजर तो रहे होते हैं, लेकिन हमें इस चीज का इदराक नहीं होता कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये है क्या। तो बुनियादी तौर पर हम उसकी निशानदही करते हैं कि ये चीजें हमारी जिंदगी में आगे चलती हैं और रोल प्ले करती हैं इंसान की कामयाबी के अंदर। तो ये जो किताब है 12 रूल्स फॉर लाइफ एंड एंटीडोट टू केओस, ये बेसिकली किताब है कि केओस का एक एंटीडोट है कि वो जिंदगी जो बड़ी गहमा गहमी के अंदर है इंसान की और इंसान के पास फुर्सत नहीं है जिंदगी से लुत्फ उठाने के लिए, तो वो कौन से ऐसे उसूल है जिनके ऊपर वो अगर कारबंद हो जाए तो उसकी जो जिंदगी है, जो जैसे आपने कहा प्रोग्राम का नाम भी है जाविदा, हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर किताब 2018 में लिखी गई, और ये कैनेडियन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े मारूफ हैं और एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं, जॉर्डन पीटरसन, उन्होंने इस किताब को लिखा है। और जब मैंने पहले तो इस किताब के बारे में कुछ रिव्यूज वगैरह जो थे वो सुने, और सुनने के बाद मुझ में भी ये इश्तियाक पैदा हुआ कि मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, देखा जाए। मेरा ये स्टाइल होता है कि जब भी मैं किसी अच्छी किताब के बारे में सुनता हूं तो पहले मैं यूट्यूब पे जाके ना उसके ऊपर जो लेक्चर राइटर का होता है किताब के बारे में उसको सुनता हूं कि राइटर क्या कहना चाहता है, और उसके बाद फिर जब मुझे लगता है कि हाँ ये किताब पढ़ने वाली है तो इसको मैं परचेज करता हूं या डाउनलोड कर लेता हूं और उसको फिर पढ़ना शुरू कर देता हूं। तो ये किताब अभी रिसेंटली जब मैं इसको अभी मुकम्मल नहीं हुई, कुछ ऐसे उसूल जो मैंने पढ़े और मुझे लगा कि ये जो हमारे सामईन हैं उनको शेयर करनी चाहिए ये बात, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के साथ लिंक करती है। तो मुख्तलिफ रूल्स हैं इस किताब में, उसने 12 जो उसूल हैं,
2: अच्छा,
3: उन उसूलों के ऊपर रोशनी डाली है कि वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको अगर इंसान अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लेता है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। मुख्तलिफ उसूल होते हैं ना जो इंसान अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है और अपनी आदतों में उसका शुमार कर लेता है। तो जब एक अच्छाई आपकी आदत बन जाए तो फिर आपको भी नहीं पता चलता कि कैसे अनकॉन्शियसली गैर शाऊरी तौर पर आप कामयाबी के रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ उसूल हैं, उस पे इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे।
2: तो सर बात तो हमने कर ली 12 रूल्स ऑफ लाइफ, और रूल्स डिस्कस ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। मैं खुद इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छा रूल लगता है, सबसे खूबसूरत और सबसे जो आपको पसंद आया असली तौर पर, उसके बारे में।
3: इसमें रूल्स क्योंकि 12 उसूल हैं, और एक तो ये भी हो सकता है कि हम वन बाय वन एक उसूल को पकड़े सारे को डिस्कस करें, लेकिन आपने जो फरमाइश की आपको बहुत अच्छा लगा, लगा। तो जो मेरे अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखते हुए अब वो ये कहता है कि मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। कि अपनी जिंदगी में उन लोगों को आप दोस्त बनाओ जिनके साथ बैठते हो और बैठ के जब आप उठते हो उसकी कंपनी से तो आप डिमोरलाइज नहीं होते हो। अच्छा। आपका मोरल हाई होता है। वो लोग जिनकी बातें जो आपकी कामयाबी पर वैसे ही खुश होते हैं जैसे आप खुद अपनी कामयाबी पे खुश होते हैं, और आपकी जिंदगी में जब गम आता है तो आपके गम में ऐसे ही गमगीन होते हैं जैसे वो उस दुख को अपना दुख समझ रहे होते हैं। हम रोज स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम दूसरों के लिए इतना कुछ मैंने किया तो मुझे ये उसका सिला मिला, मैंने दोस्तों के लिए इतना टाइम जाया किया तो आज मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पर जिंदगी में वो लोग कि जिनके पास जब आप बैठते हो आधा घंटा पौना घंटा बैठने के बाद जब आप उठते हो फिर आप एनालाइज करो कि आपकी कैफियत क्या है। आप डिमोरलाइज्ड उठ रहे हो वहां से या कुछ नया करने की मोटिवेशन लेके आप वहां से निकल रहे हो। अगर तो उठते हुए आप उदासी आप पे वारिद है, परेशान हो, गमगीन हो गए हो, अपने बारे में कुछ खदशे और वसवसे हैं ये कि यार पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस कैफियत से दो चार हैं, तो समझ लो कि आप गलत कंपनी का हिस्सा बने हुए हैं। अच्छा। हाँ वो लोग जिनकी कंपनी में आप बैठो और जब आप वहां से उठो तो उठ के जब आप जा रहे हो तो आपके अंदर एक स्पिरिट हो, कुछ करने की एक उम्मीद हो, एक जुस्तजू हो, एक आरजू हो, अपनी ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचाने के पीछे एक जज्बा कार फरमा हो और एक रोशनी का हाला जो है वो आपकी सोचों के गिर्द हो, फिर वो लोग आपकी जिंदगी में कामयाबी में रोल प्ले करते हैं।
2: अच्छा सर, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं वो बोलते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं उसमें जब मोहब्बत के बाद हम आपके लिए चांद पर भी जा सकते हैं, हम आपके लिए तारे तोड़कर भी ला सकते हैं। तो फिर ऐसा भी जज्बा भी पाया जाता है ना क्या?
3: अब हाँ, इसके लिए वो एक और रूल है जो वो ये डिस्कस करता है कि आप उन लोगों से, इस पे हम जब उस रूल पे आएंगे तो आपके इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो उसूल है बुनियादी तौर पर कि हमने अपनी जिंदगी में उन

0: तो यार ऐसे होना नहीं चाहिए था, या सर ने कुछ खराब किया या कुछ भी, इस तरह के जो कमेंट्स देते हैं आप, जो आपको मशकूक बना देते हैं अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, ऐसे लोगों से अवॉइड करना, ये वो पहला असूल है जो कम से कम यूथ को तो जरूर इसके ऊपर अमल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यूथ को जरूर इस पर अमल करना चाहिए। और सर ने बड़ा ही खूबसूरत एक रूल बताया और उसको डिस्क्राइब किया। और हमें यहाँ पर लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, और हम ब्रेक के बाद एक नया रूल जो है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीबी की दुनिया और प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में एक बार फिर अली अजबत सर इरफान अली फानी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे हैं 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक के ऊपर और उसमें जो जितने भी रूल्स हैं जो अच्छे कुछ हमें लगते हैं रूल्स उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और सर से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले मोहब्बत का एक सर रूल था उसके ऊपर आप बात कर रहे थे तो क्या कहेंगे वही से शुरू
2: करें। जी आप भी माशाल्लाह उम्र के उस हिस्से में हो जहां पे ये जो जज्बात होते हैं ये बड़े घोड़े की तरह इंसान पे सवार होते हैं तो जो वो दूसरा उसूल है जो मोहब्बत को डिस्कस करता है वो कहता है कि ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग और यू आर लव विद के आपको अपने आप को इस तरीके से आप ट्रीट करो अपने साथ इस तरह से सलूक करो जैसे आप उससे सलूक करते हो जिससे आप मोहब्बत करते हो।
1: अच्छा
2: अब इसको समझना आपको एक मैं मिसाल से समझाता हूँ। एक बाप है उसको अपने बेटे से मोहब्बत है ठीक है। अब बेटा जो है वो बीमार हो गया और वो दवाई नहीं खा रहा दवाई कड़वी है। बाप को भी पता है कि ये कड़वी दवाई खा के ये रोएगा लेकिन बच्चा नहीं चाहता कि मैं ये खाऊं
1: लेकिन मोहब्बत है
2: लेकिन उसकी मोहब्बत ड्राइव कर रही है कि जब तक खाएगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। इंजेक्शन लगाने पे बच्चा रो रहा लेकिन फिर भी वो लगवाता है कि जब तक नहीं करेगा। बेशक इसको ना पसंद भी है ये काम जिससे वो मोहब्बत करता है लेकिन मैंने इसलिए करना है क्योंकि इसके लिए बेहतर है। अगर इस रूल को आप अपनी जिंदगी में देखो कि हम रोज ये सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक बड़ी अच्छी है मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए ठीक है मुझे कम खाना चाहिए खाने के बाद मुझे वॉक करनी चाहिए और डॉक्टर्स भी हमें बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं कि आप यार ये आप करो ये आप ना करो लेकिन अगर हम उस तरह से अपने आप से मोहब्बत करें जैसे हम बच्चे से बाप मोहब्बत करता है या एक महबूब अपने मोहब्ब से मोहब्बत करता है तो आपने जैसे बात की थी ना कि मोहब्बत में आप सारा कुछ कुर्बान कर देते हो तो मोहब्बत में तो लोग चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं फरहाद बनकर पहाड़ों के अंदर से नहरें निकाल लेते हैं। शीरी फरहाद का वाक्या हीर रांझा शशि पुन्नू सोनी महिवाल कितनी लोक दास्तानें हैं जो मोहब्बत के अंदर जो मुशक्कत है उससे भरी हुई है। लेकिन जो आप अपने महबूब से चाहे वो बेटे की फॉर्म में है बेटी की शक्ल में है या महबूब की शक्ल में किसी भी शक्ल में है जैसे आप उसके साथ ट्रीट करते हो अगर उसका आधा हिस्सा भी आप अपने आप को ट्रीट करने पे लगा दो
1: तो आपकी जिंदगी जावेदा
2: बन जाए आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आपका दिल सुबह कर रहा है कि यार मैंने सोना है सर्दी बड़ी है वॉक पे मैंने नहीं जाना लेकिन आपको पता है कि मुझे चीज ना पसंद है सुबह उठना लेकिन है मेरे लिए बेहतर
1: उठो। लेकिन हम तो स्टूडेंट्स हो गए ऐसे करते हैं सुबह 8 बजे क्लास छोड़ देते हैं यार हम बिस्तर में लेटे हुए हैं तो उठना नहीं है ज़हमत नहीं करते।
2: तो ये रूल बच्चों के लिए भी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने प्रायोरिटाइज करना होता है अपनी जिंदगी को। और दूसरी बात अजवत जो हमेशा मैं कहता होता हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो रद्द अमल होता है हमारे अपने इंतखाब का कि मेरे साथ एक चीज बुरी हुई और उस बुरी के नतीजे में मेरा रिएक्शन शो करेगा कि क्या और मेरे साथ बुरा होगा या उस बुरे में से कुछ मेरे लिए अच्छा निकल आएगा। इसके लिए एक रूल इस्तेमाल होता है वो भी एक बड़ी अच्छी किताब में लिखा हुआ था 10-90 रूल।
1: अच्छा।
2: 10-90 और 90-10 रूल भी इसको कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो खराबी होती है ना वो सिर्फ 10% होती है जो 90% डिस्ट्रक्शन होती है वो हमारा रद्दे अमल जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सवेरे उठे आप तैयार हुए आपने यूनिवर्सिटी आना था चाय का कप मुलाजम ने गिरा दिया आप पे या भाई ने गिरा दिया या किसी बेबी ने गिरा दिया। अब चाय का कप आप पे गिरा अब इस कप के गिरने का जो रद्द अमल है ये डिटरमिन करेगा कि अब थोड़ी देर बाद आपके साथ क्या होने जा रहा है। अगर तो आप गुस्से में उठे उसको भी धक्का दिया कप को उठा के फेंका कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तुम्हें पता नहीं है फलां फलां करके आप गए तेजी में आपने दोबारा शर्ट चेंज की भागे गाड़ी में और ट्रैफिक में आगे आ रहे हो आगे से ट्रैफिक भी जैम आ रही है और आपके जहन में अभी तक वही जो 10% हुआ था वही सारा चल रहा है। आपने एक गाड़ी के अंदर गाड़ी मार दी वो गाड़ी वाला बाहर आया वो भी गुस्से में था कि तुमने गाड़ी क्यों मारी आप भी गुस्से में थे लाला लाला एक दूसरे को आपने थपड़ो थपड़ी हो गए वहां पे और अल्टीमेटली वहां से लोगों ने छुड़वाया ना क्लास हुई थाने में जाके बात खत्म हुई। हुआ क्या था 10% और बाकी जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ मेरे रद्दे अमल की वजह से। बात समझ रहे हो अगर उसी वाक्य को मेरे साथ बुरा तो हो गया जो होना था चाहे गिर गई गलती होगी उसने टेंशन ली तो नहीं कराई हो गई अब इसको मैं ठंडे दिमाग से सोचूं कि चलो गलती हो गई है कोई बात नहीं, मैंने चेंज करूं और ठंडे दिमाग भूल जाऊं कि ये मेरे साथ हुआ है, और आप आराम से अपनी क्लास में चले जाओ, सारे मसले हल हो जाने थे। तो हमारी जो तकदीर होती है ना, जिसको हम कहते हैं ये मेरी तकदीर है, ये तकदीर बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर हमारे जो रद्दे अमल होते हैं, हमारा जो इंतखाब होता है कि मैंने ठंडे मिजाज से यहाँ पे पेश आना है या गर्म मिजाज से यहाँ पे पेश आना है, तो मेरा ठंडा दिमाग और गर्म दिमाग ये दोनों डिटरमिन करेगा कि फ्यूचर के अंदर मेरे साथ क्या होगा।
1: बिल्कुल जबरदस्त ब्रेक यहाँ पर हमें एक फिर लेनी है लिसनर्स, एक ब्रेक ऑब्स्टिकल है। ब्रेक के बाद सर से पूछूंगा कि किस तरीके से आपने एक सर ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि 1090 रूल के बारे में सर बता रहे थे, तो उसमें देखिए अब उसमें तो फिर यही लगता है ना कि आप घर से चलता है सब कुछ, क्या आप अगर घर से टेंशन में जाओगे कहीं पे तो डेफिनेटली आप जो है वो आगे भी चीजों को उसी तरह कॉप अप करोगे। मैं इसमें पूछना चाहूंगा ब्रेक के बाद सर से कि कितना रोल प्ले करते हैं घर वाले भी आपकी टेंशन और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन बनाने में। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, आप सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम जावेदा जिंदगी के साथ एक बार फिर अली अजवद आपकी खिदमत में हाजिर है। सर इरफान अली फानी साहब बड़े दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी और खूबसूरत बातें कर रहे हैं, और हम उनसे पूछ रहे थे अभी, सर मुझे ये बताइए कि ब्रेक से पहले भी मैंने बात की थी, आपने बात की थी घर से जब बंदा आता है, चाय वाली आपने एक एग्जाम्पल दी थी, तो आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है घर वालों के लिए भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन बनाना?
2: देखो, अगर जो फैमिली जो होता है वो सबसे पहली दरसगाह होती है ना इंसान की, जब बच्चे ने पैदा होना तो एक फैमिली में पैदा होना है, माँ की गोद उसके लिए दरसगाह है। लेकिन जो जिस उसूल के तहत मैंने बात की थी कि इंसान के साथ अच्छा या बुरा तो कहीं भी हो सकता है, क्या पता कि यहाँ यूनिवर्सिटी से जाने से पहले के टीचर ने आपको डांट दिया और उसकी डांट आपके दिमाग में वो 10% है,
1: बैठ गई
2: वो 10% है। अब उस डांट के ऊपर आपके जो नतायज हैं, आप किसी दोस्त के साथ गुस्से में बात कर रहे हो, आमतौर पर हम अपनी जिंदगी के अंदर किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं, यही ये भी 1090 में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको डांट दिया और क्लास के अंदर मैंने कहा आज वह तुम बड़े बदतमीज बच्चे हो फलां,
1: और मैंने वो गुस्सा किसी और पे निकाल,
2: अच्छा अब क्या हो तुम्हारे दिमाग में, ये गुस्सा बुनियादी तौर पे एक एनर्जी है, मेरे अंदर एक एनर्जी थी मैंने ट्रांसफर कर दी आप में। अब जब तक आप उसको कहीं और ट्रांसफर नहीं करोगे आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते, ये नेचर है, ये फितरत है। या तो इसको भूल जाओगे तो उसके अल्टीमेटली इंसान को नुकसान भी, हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हाँ, अब उसने कहीं ना कहीं निकलना है। अब वो कहते हैं ना कि गुस्सा उस पानी की तरह होता है जो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, गुस्सा पानी है। गुस्से ने ऊपर वाली पोस्ट से निचली वाली पोस्ट और निचली वाली पोस्ट से उससे निचली वाली पोस्ट तक
1: वापस नहीं आना,
2: हाँ ऊपर तो नहीं जाएगा।
1: वो कहते हैं ना कि एक पीक, मतलब एक पीक से
2: हाँ नीचे की तरफ
1: यस
2: कहते हैं गुस्से की यही मुनाफकत है कि वो हमेशा अपने से कमजोर लोगों पे तो निकल जाता है लेकिन अपने से ताकतवर की तरफ देखना भी कभी नहीं करता।
1: गुस्सा जो होता है वक्ती तौर पे ही होता है,
2: यस
1: मतलब वो उसका एक लेवल होता है, वो फिर खुद ही काम होता जाता है।
2: हाँ, ये इसके भी बहुत सारी मेडिकल रीजन है, बल्कि हमने एक शायद एक प्रोग्राम किया था गुस्से के ऊपर भी, पूरा 45 मिनट के इसके मेडिकल रीजन क्या होती है, क्यों बंदा गुस्से में आता है और कैसे उसको कम किया जा सकता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर वो जो एक मिसहैप आपके साथ हो चुका, उस मिसहैप को किस तरीके से आपने उस मिसहैप पे अपना फीडबैक देना है, अपना रद्द अमल और अपना रिस्पांस देना है, वो रिस्पांस डिटरमिन करता है कि आपका अगला दिन अच्छा गुजरेगा या बुरा गुजरेगा। और इसलिए वो कहा जाता है, बहुत सारे शोरा ने भी ये बात की और जितने भी मजाहब हैं वो भी इस चीज की तलकीन करते हैं कि जो गुस्सा होता है ये शैतान का बुनियादी तौर पर हथियार होता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना इंसान वो नहीं होता गुस्से में जो वो ओरिजिनल में होता है, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है उसका स्टीयरिंग जो है वो किसी और फोर्स के हाथ में होता है, और वो फोर्स क्या है, कुछ खदशे हैं, कुछ दूसरे शख्स के बारे में इल्जामात हैं, कुछ दूसरे शख्स की बुराइयां हैं जिसने आपको ऐसा बनाया हुआ है। अब वो जिस तरफ आपको लेके जाएंगी चलती जाएंगी, और वो बात बाजू का थानों से आगे आगे और गुजर जाती है, और जब पता चलता कि पीछे बात क्या थी, क्यों आप लोग यहाँ तक पहुँचे, तो बात भी याद नहीं आती कि हम लड़े किस बात पे थे।
1: गुफ्तगू तो बड़ी जबरदस्त चल रही है और अब हमारा एक सिलसिला चलता जा रहा है, हम टर्न्स बाय टर्न्स हम रूल्स की तरफ आ रहे हैं।
2: यस यस यस यस।
1: सो अब कोई और इंटरेस्टिंग सा रूल बताइए कि जो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी हो और हमारी लाइफ के लिए जरूरी भी हो।
2: अच्छा, हमारी जिंदगी के अंदर जो एक बहुत बुनियादी मसला है ना, वो है तकाबुल, मवाजना, कंपेरिजन।
1: Exactly.
2: कि हम जिंदगी में जब कंपैरिजन के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं ऐसा तो दूसरा ऐसा, वहां से फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट को देख के आपने देखा कि उसकी जॉब हो गई और आप अभी जॉबलेस हो, मसला बन गया। कंपैरिजन जब भी आएगा प्रॉब्लम होगी। इसके ऊपर जो रूल है वो बड़ा मजे का, उसने कहा कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अपने आप को अपने माजी से कंपेयर करो, अपने हाल को अपने माजी से कंपेयर करो, अगर तो तुम्हारा हाल तुम्हारे माजी से अच्छा है तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपकी नशो नुमा हो रही है, आप कामयाबी के रास्ते पर हो। उन लोगों से कंपेयर मत करो जो आज जिस जगह पे मौजूद हैं। आपको नहीं पता कि वो यहाँ तक पहुंचने में उन्होंने कितनी मुसाफतें तय की हैं और किन किन
1: जनरेशंस ने, उनसे पहले लोगों ने,
2: यस, कि क्या वो किस तरह यहाँ तक पहुंचे हैं। लिहाजा कंपैरिजन के जो मसाइल हैं इससे अगर इंसान निकल आए, इंसान बॉदर ना करे कि मैंने ये पहन रखा है, दूसरे ने ये पहन रखा है, और अगर दूसरे का अच्छा पहनावा आपके दरमियाने से पहनावे की वजह से आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है। कि लोग अगर आपकी चीज़ को अप्रिशिएट कर दें तो ठीक, अगर डेप्रिशिएट कर दें तो आप प्रॉब्लम में आ गए। तो आपका कंपैरिजन अपने आप से होना चाहिए। कल आप मैट्रिक में थे, आज आपने ग्रेजुएशन कर ली, कल आप जो थे कुछ नहीं कमा रहे थे, आज आप कुछ कमा रहे हैं, कल आपके अंदर कुछ बुरी आदतें थीं, आज आप उन बुरी आदतों से निकल चुके हैं। ये जो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखते हैं वो भी क्या होती है, हम बुनियादी तौर पर कंपेयर कर रहे होते हैं कि इस नए साल में मैं ऐसा कुछ करूंगा जो मैं पिछले साल नहीं कर पाया, लेकिन वो रेजोल्यूशन फिर हमें अगले साल ही जाके याद आती है। वो कहता है कि यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, इस तरह का चक्कर बन जाता है।
1: यकम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है,
2: हाल है।
1: बड़ी जबरदस्त बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया। वो भी राइट पे।

0: Broadcasting from River City Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

0: 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: लिसन, लर्न, डिस्कवर with radio station FM 92.6 UCB के दिन में।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: वाकई?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
6: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
7: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
5: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
8: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन ग़िज़ा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
9: नशे के मर्ज में मुब्तला अफराद दूसरे मरीजों की तरह हमारी तवज्जो और नशे के इलाज के मुस्तहिक हैं। नशे के मर्ज में मुब्तला अफराद को तिब्बी मुआयने और इलाज के साथ मुनासिब देखभाल की भी जरूरत है।
10: अद्वियात और नफसियाती तरीका इलाज के जरिए नशे का इलाज मुमकिन है।
9: नशा एक मर्ज, इलाज मुमकिन।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,